ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

अनोखी वजह है सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं।

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
2: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मतलब सनराइज रेडियो आप काफी सारे मीडियम के थ्रू भी सुन सकते हैं, आई होप आपको पता है। वेल डैब के जरिए आप सुन सकते हैं इन मैनचेस्टर, एट द सेम टाइम दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड करना है एंड देन देयर यू गो, इंटरनेट के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं। ऑल्सो हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा, सारे अपडेट्स अपकमिंग इवेंट्स सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559 565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303
4: क्योंकि सोने दिखाई महंगाई मैं चांदी ले आई।
5: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफ कोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

वेलकम टू येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद किया होगा ऐसी मैं आशा कर देता हूँ। मेरा नाम है एबी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम।

0: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड, 7230 30।
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: they have a soulmate's years before they can become one.
1: Once again, welcome back after yet another beautiful song really on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम पे नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
6: 24 hours a day. Sunrise Radio.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, नथिंग लाइक द गोल्डन ओल्डीज। बट राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़ और द बीइंग ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा, कहीं ना आप जाइएगा। आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर, स्टे ट्यून्ड।

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Just took me back in time yaar. Kitna pyara sa gana tha. I hope aapko bhi pasand aa gaya hoga. पर इस आवर की समाप्ति यही खत्म होती है. आई सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस आवर व्हिच इज गोइंग टू बी द लास्ट आवर ऑफ दिस शो. सो मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़. ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. स्टे ट्यून्ड.

इस शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम, ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ। हिट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा, विच मीन्स दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी। और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया जाता है।

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजानों की ख्वाहिश के साथ नाही चट्ठा आप सब सुनने वालों को सलाम पेश करती हैं, हेलो कहती हैं, सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग। मैं गुड आफ्टरनून कहते कहते बची गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। लॉन्ग वीकेंड है जी, वड्डा लम्मा वीकेंड है और उसमें हम लोगों ने प्लान्स किए होंगे इधर उधर जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। उम्मीद है कि मौसम भी बहुत अच्छा रहे और ये आप इंजॉय करें अपना लॉन्ग वीकेंड। जी हाँ, आज सैटरडे है और सैटरडे को जैसे कि मेरा शो हुआ करता है 11 से 2, उसी तरह से आज शो होगा 11 से 2। और चूंकि लॉन्ग वीकेंड है, आपको पता है कि ये लॉन्ग वीकेंड क्यों है, ये जो मंडे की छुट्टी बैंक हॉलीडे है ये क्यों है जी, इसको कहते हैं जी मजदूरों का दिन और लेबर्स डे की वजह से ये छुट्टी है। पॉलिटिकल पार्टी लेबर नहीं, वैसे जो असल वाले लेबर्स होते हैं उनके लेबर्स डे की छुट्टी की वजह से ये है जी हमारा दिन, जो कि मजदूरों का दिन की वजह से हमारा लॉन्ग वीकेंड है। लेबर्स डे के हवाले से एक छोटी सी पंजाबी की, छोटी सी नहीं थोड़ी सी लंबी दरमियानी सी पंजाबी की शायरी लेकर आई हूँ, वो आपको सुनाऊंगी। और आपको ये एक दफ़ा फिर से बता दी चलूँ कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 106 FM पर और 103.2 FM पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डैप पर सुन रहे हैं जनाब आप, ब्रेडफोर्ड में, लीड्स में, हैलिफैक्स में, मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन एंड एक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में, कीथली, इल्कले, स्किप्टन, इसमें हम जल्दी जल्दी आने ही वाले हैं जी आप लोगों के पास भी। लेकिन घबराइए ना, जब तक हम आते नहीं हैं आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो दुनिया के किसी भी हिस्से में, वेबसाइट पर यानी कि ऑनलाइन www.sunriseradio.fm पर या फिर www.sunrise.radio। जी हाँ, ये तो है जी हमारे प्रोग्राम का तारुफ। प्रोग्राम का फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसा कि होता है पहले, दो घंटे पहले हमारे गीत होंगे और गीतों के बाद जो लास्ट होगा वो हमारा होगा जी डिस्कशन आवर, जिसमें आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स हम लेंगे और आप अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जिस टॉपिक पे आज हमने बात करनी है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट आवर में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा इन तीन घंटों में। मजदूरों के दिन के हवाले से आपको कुछ शायरी सुनाना चाहती हूँ, तो सोचती हूँ कि पहले सुन लेते हैं हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर के बाद जब आते हैं तो फिर मैं आपको मजदूरों के दिन के हवाले से चंद अशआर आपकी गोश गुजार करूंगी। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। बढ़ते हैं हिट ऑफ द आवर की जानिब और फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21 Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

0: जी हाँ, सो नाइस। तो ऐसा है कि ये था मेरे दिल बता, तो आज सारे गीत जो होंगे वो दिल से रिलेटेड होंगे। हाँ जी, हर गाने में दिल होगा या दिल से शुरू होता होगा। तो उम्मीद है कि मैं ये टारगेट बल्कि एक चैलेंज पूरा कर पाऊंगी। ऐसे ही करती हूँ, कोई एक टॉपिक रखती हूँ हर वीक और कोशिश करती हूँ कि, क्योंकि चैलेंज लेने की आदत है ना कुछ इस तरह से, और मुझे अच्छा लगता है कि कोई ना कोई चैलेंज हर काम में हो और फिर मैं उसको पूरा करने के ध्यान में लगी रहूँ। तो आज हम कोशिश करेंगे तमाम गाने दिल के हवाले से हों। कुछ शायरी भी दिल के हवाले से है, लेकिन मेरे पास पंजाबी शायरी बहुत अच्छी है जिसमें दिल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बगैर दिल तो अभी काम चलाना पड़ता है कभी कभी। जैसा कि सबसे पहली जो मैं आपके लिए ये पोएट्री लेकर आई हूँ, मज़दूरों के दिन के हवाले से, और ये मज़दूरों का के दिन की जो बैंक हॉलीडे है वो लेबर डे की वजह से है, और लेबर डे की पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। इसके हवाले से बहुत ही अच्छे चंद अशआर हैं, आपकी खिदमत में पेश करूँगी ताकि हमारा दिल भी मज़दूरों के साथ लग जाए। आखन लगी प्यो नू ती मंजूरां दी, आखन लगी प्यो नू ती मंजूरां दी, सुनिया है अज छुट्टी है मजदूरां दी। अब्बा जी अज छुट्टी असी मनावांगे, अपने सारे दुख ते दर्द भुलावांगे, टाली थल्ले अपनी मंजी डावांगे, खट्टे रज दोपहर नू रोटी खावांगे, कट्ठे रज दोपहर नू रोटी खावांगे, अपने हथीं चाह दा कप पिलावांगी, हौली हौली पक्की झोल सलावांगी, लौड़े वेले सों के जद उठ जाओगे, धीए धीए कह के कोल बुलाओगे, अब्बा जी मैं नस्सी नस्सी आवांगी, झज्जर विच्चों पानी नाल लियावांगी, अब्बा जी ओ मेरे सोने अब्बा जी, सुन के गल्ला कहंदा अब्बा सुन कुड़िए, एवें अपने ख्वाब ख्याल ना बुन कुड़िए, कम ते जाके पैसे चार कमावांगा, आंदा होया राशन नाल लियावांगा, साढ़े वेड़े दुख दी तेज नेरी है, पैसे पैसे दी अज लोड़ वधेरी है, तीए कल नू डोली तैनू पाना है, थोड़ा थोड़ा करके दाज बनाना है, जिद ना करते कम ते मैनू जान दे, जाके किते दिहाड़ी मैनू लियान दे, वाह वाह औखे हो गए दिन गरीबां दे, कम भी अज कल लभदे नाल नसीबां दे, समझदारे तेनू की समझाना है, तीए डाडा औखा दाज बनाना है, ए गल मेरी चेते रखी लाडलिए, ए गल मेरी चेते रखें लाडलिए, छुट्टी हुंदी ए वड्डियां सरकारां दी, छुट्टी हुंदी ए सरमाएदारां दी, इंज वी जेड़े अक्सर मौजां करदे ने, छुट्टी करके अफसर मौजां करदे ने, ना चपड़ासी ना ही चौकेदार दिए, मर्जी चलदी एथे ठेकेदार दिए, भावें ऐ दिन साढ़े नावें लग्या है, सानू अज तक एथों कुछ ना लभ्या है, साढ़े वर्गे बेबस ते मजबूरां दी, तीए छुट्टी हुंदी नहीं मजदूरां दी, तीए छुट्टी हुंदी नहीं मजदूरां दी। जनाब, ये तो मज़दूरों के हवाले से आपकी खिदमत में चंद अशआर पेश किए, क्योंकि ये जो बैंक हॉलीडे है ये मज़दूरों के लिए ही है, लाइक लेबर डे है, इस वजह से हमें ये याद रखना चाहिए। तो अब हम टाइम चेक करते हैं और फिर कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: समय इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:15, यानी कि 15 minutes past 11, यानी कि 11:15, यानी कि 11:15। जी हाँ, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब और मिलते हैं ब्रेक के फौरन बाद। हमारे साथ रहिएगा, याद रखिएगा, आज गाने होंगे दिल पर। हाँ जी, सीधे ठा करके दिल पर।
2: सनराइज रेडियो। Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
7: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

वेलकम बैक सामेन। आपने सुनी हमारी एडवर्ट ब्रेक और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानेब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दिल के हवाले से आज सारे गीत प्ले करेंगे, तो अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में टन टन टन, ये टन टन टन, समझ गए? बहुत प्यारा गीत है, एंजॉय कीजिएगा। वाजे, थैंक यू वेरी मच, आपने फ़ोन किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पंजाबी पोइट्री आपको मेरी पसंद है, बहुत शुक्रिया। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी पंजाबी पोइट्री और सुनाऊंगी, ठीक है? सबके लिए, जिन्होंने नहीं पसंद होते वाले भी, सबके लिए पंजाबी पोइट्री और लेकर आई हूँ मैं, बहुत अच्छी, और आपकी खिदमत में वो भी पेश करूंगी। पहले हम सुनेंगे ये अच्छा सा गीत और फिर हम बढ़ेंगे अपने बाकी के प्रोग्राम की जानेब। सुनते रहिएगा, इन्जॉय कीजिएगा।

जी हाँ, ये पगला है समझाने से समझे ना। ये बात तो है, ये तो दिल तो पगला है ही। तो वाजिद भाई, आपके लिए अच्छी सी पंजाबी की शायरी। पंजाबी में मुझे ये छोटी बहर की नज़म बहुत पसंद आई, मैंने सोचा ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। ये राफे रांझा हैं, एक शायर, पंजाबी के शायर हैं, पाकिस्तान में, उनका नाम है राफे रांझा। ये उनकी शायरी है। ओदे नाल मुकाई ते मुकनी है रुसवाई ते, जो दे नाल मुकाई ते रुसवाई ते मुकेगी। ओदे नाल मुकाई ते मुकनी है रुसवाई ते चकरो चकरी हो जांगा तू जे गल कुमाई ते। चन भी मूह लकोंदा सी राती ओ शर्माई ते, चन भी मूह लकोंदा सी राती ओ शर्माई ते, मैं भी पागल हो जांगा ओदी याद भुलाई ते। कार फिर चीका मारेगा, शेर पे गौर कीजिएगा, कार फिर चीका मारेगा मां दी आवाज ना आई ते। हक यतीम दा खद आई लानत ऐस कमाई ते, मैनू पागल कह दिता दुनिया समझ न पाई थे। हीर भी फेर हीरे रांझे दी अखवाई थे। ये कितना मज़े का आखिरी शेर है कि अगर रांझा ना हो तो फिर हीर की क्या वैल्यू है। हीर भी फेर हीरे रांझे दी अखवाई थे, बहुत अच्छा लिखा है जनाब। इनकी मेरे पास एक और भी है, बहुत ही खूबसूरत, वो है पोइट्री। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि पढ़ेंगे अपनी कमर्शियल ब्रेक की जाने थोड़ी ही देर में, और बल्कि ऐसा कर देते हैं कमर्शियल ब्रेक को थोड़ा, दो मिनट हैं, आपको एक और पोइट्री सुनाती हूँ, फिर उसके बाद कमर्शियल ब्रेक पे जाते हैं, ताकि क्योंकि गीत तो हम लगा नहीं सकते हैं इस थोड़े से टाइम पे, इसलिए आपको सोचती हूँ कि राफे रांझा की सुनाई थी तो फिर राफे रांझा की ही दोबारा सुनाती हूँ। दसा किसरा जे हार दी गल्ले ला हासिल जाए प्यार दी गल्ले, रो के सच्चा हो जांदा है ओदे ते हर वार दी गल्ले, दिल देना ते दिल ही मंगना है, दिल देना ते दिल ही मंगना ऐ ते कारोबार दी गल्ले, लड़ना वीरा तू ही रख लै पंज मरले ते घर दी गल्ले, बंदा मर के जी सकदा है सारी बस किरदार दी गल्ले, ए ना समझी होया कुछ नहीं ए रांझे दे प्यार दी गल्ले। जी हाँ, ये राफे रांझा की मैंने एक और पोइट्री आपको सुनाई पंजाबी की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद होगी जी इवेंट्स डायरी के फौरन बाद होगा जनाब आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत, बहुत मज़े का गीत होगा, अलका याग्निक की आवाज़ में, दिल देने की रुत आई। हाँ जी, क्योंकि दिल के बारे में बात हो रही है। तो बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उसके बाद फिर इवेंट डायरी, और फिर दिल देने की रुत आई।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुसल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दैट्स ब्रैडफोर्ड 723030।
6: Here's what's happening across the region over the coming days. First in Bradford, Jim Moyer. Neo Fauna continues at Cartwright Hall, with wildlife-inspired artwork running through to August. Also in Bradford, Miss Saigon opens at the Alhambra Theatre from May 5th, bringing the major musical production to the city. Over in Calderdale, the Royal Photographic Society's Analogue 10 continues at Dean Clough in Halifax. Also at Dean Clough, Fur and Feathers continues through May. In Leeds, I, Daniel Blake, is at Leeds Playhouse, running through to 9th of May. In Manchester, Bank of Dave the musical is at the Lowry in Salford, running from 2nd to 16th of May. Over in East Lancashire, the Don Banks Afternoon Variety Show takes place at Darwin Library Theatre on 6th of May. And finally in Milton Keynes, Al Murray, All You Need Is Gov, comes to Milton Keynes Theatre on 10th of May. And that's your Sunrise Radio event diary.

दिल लेने की रुत आई क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत हमने गीत सुना। और नदीम भाई, आपसे बात हुई एक लंबी और अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें टेलीफोन किया। तो जनाब, गाने हो रहे हैं दिल के हवाले से, गीत यानी कि दिल के हवाले से हैं हमारे। तो हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छा सा गीत सुनते हैं, हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें ये छोटा सा गीत ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गीत है, पंजाबी का गीत है, सयोनी मेरा दिल तड़के। हाँ जी, सयोनी मेरा दिल तड़के, हाँ जी, दिल तो तड़कता है ही। तो सुनने आए गीत, इंजॉय करियो।

0: रखे आए माही दा संभाल के रुमाल वे कदी लावा अखियां ते कदी सीने नाल वे पता नहीं तोया भी है कि नहीं माही दा रुमाल गंदा अखियां दे नाल फिर रख दे विच इन्फेक्शन होएगा ते सॉरी इतने अच्छे गाने का माहौल में ख़राब कर देती हूँ ना बाद में उसको मेडिकल साइट पे ले जाकर तो बहुत ही खूबसूरत गीत ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में और मुझे याद है कि ये गीत मेरे अब्बू के पास ना वो जो पुराने ज़माने में होती थी ना कैसेट प्लेयर्स होते थे कैसटें होती थी तो वो मेरे अब्बू डाला करते थे ज़ुबैदा खानम की कैसेट थी वो अब्बू डालते थे और फिर अब्बू घर घर में गूंज रहे होते थे ज़ुबैदा खानम के गीत और उसमें ये गीत और मैं ये गीत बहुत शौक से गाया करती थी उसके साथ और फिर बाद में अभी तक ढोलक पे क्या कमाल लगता है ये गीत सयोनी मेरा दिल तड़के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गीत है बल्कि ऐसे गीत होते हैं कि आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं है ना तो यही बात है हमारा फ्लैशबैक गीत का भी टाइम होने वाला है बहुत ही खूबसूरत फ्लैशबैक गीत आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा लेकिन पहले करते हैं हम टाइम चेक और उसके बाद एडवर्ट ब्रेक फिर फ्लैशबैक गीत
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 11:45 यानी कि 11:45 यानी कि 11:45 यानी कि 12:15 जी हाँ अब हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की तरफ और कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद आपके लिए फ्लैशबैक गीत और फिर उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है हमारे साथ रहिएगा
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6, and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space, and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ
5: मैं जानती हूँ उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था
4: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है
5: सोफी ज्वेलर्स 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-056-014 सोफी ज्वेलर्स
6: Buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
7: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
6: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
8: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, कुछ तो दुनिया की अनायत ने दिल तोड़ दिया और कुछ तलखिये हालात ने दिल तोड़ दिया। कुछ तो दुनिया की अनायत ने दिल तोड़ दिया, कुछ तलखिये हालात ने दिल तोड़ दिया। हम तो समझे थे कि बरसात में बरसेगी शराब, आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहे, दिल तो रोता रहे और आंख से आंसू न बहे, इश्क की ऐसी रवायात ने दिल तोड़ दिया। वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे, वो मेरे हैं, मुझे मिल जाएंगे, आ जाएंगे, ऐसे बेकार ख्यालात ने दिल तोड़ दिया। आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे, आपको प्यार है मुझसे कि नहीं है मुझसे, जाने क्यों ऐसे सवालात ने दिल तोड़ दिया। हाय हाय हाय जनाब, ये तो आपको मैंने सुनाए अशार जो के थे दिल पर, क्योंकि हम दिल की बात कर रहे हैं, दिल के गीत सुन रहे हैं, दिल के गीत गा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपकी खिदमत में ये चंद अशार दिल के हवाले से पेश किए। अब हम ऐसा करते हैं कि बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। दिल तो चाह रहा है कि, देखा ना, दिल की बात हो रही है, दिल तो चाह रहा है कि ये गीत ना प्ले करूं, क्योंकि ये 6 मिनट का है और खबरों का टाइम हो जाएगा और खबर 4 मिनट रह गए हैं खबरों में, तो फिर क्या किया जाए कि आपकी खिदमत में ये गीत पेश किया जाए कि ना किया जाए। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम आपके लिए कोई छोटा सा गीत ढूँढते हैं जो कि आप इंजॉय भी कर लें और ख़त्म भी ना हो। तो हम ऐसा करते हैं, दिल देता है रो रो दुहाई। हाय क्या गीत है, इंजॉय कीजिएगा।

0: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
1: From the Sky News Centre at midday. The German Defence Minister says the US decision to withdraw troops from his country was foreseeable. The Pentagon's announced plans to move 5,000 service personnel as Germany's Chancellor claims Iran's humiliated America in peace negotiations. Donald Trump says he'll blast the hell out of the country if a deal isn't reached. Former Royal Navy Commander Tom Sharp says cutting back American presence overseas won't help Mr. Trump.
2: It reduces their access. It reduces their influence. Ultimately, it makes them weaker. Even if you look at the Gulf, the amount of European countries, the amount of overflight from our bases, if you start paring that away, then eventually you become less safe yourself.
1: The Prime Minister has suggested that some pro-Palestine marches could be stopped, telling the BBC he wants tougher action on protesters using certain phrases. There have been calls to suspend demonstrations after two Jewish men were stabbed in North London earlier this week. The Health Secretary has been quick to downplay claims he's planning on trying to replace Sir Keir Starmer. It's reported Wes Streeting and Greater Manchester Mayor Andy Burnham could be looking to unseat the Prime Minister. A teenager is being held in custody after crowds were told to leave a Peter Kay show in Birmingham last night. Police have now said no items of a suspicious nature have been found at the venue. In sports, Ipswich will be promoted back to the Premier League if they beat QPR this lunchtime. Three Championship teams are battling for the second automatic spot on the final day of the regular season. Millwall or Middlesbrough could go up if Kieran McKenna's team fail to win. He says his club have been here before.
3: You accept the extra adrenaline and tension that comes around the game, but you also try and enjoy it. It's going to be, again, an absolutely wonderful atmosphere in our stadium. It's the third time in 4 years that we've had a home game to try and get promoted. These are special times and they're special times to enjoy.
1: And former F1 driver Alex Zanardi has died at the age of 59. The Italian competed for five seasons before a major crash in 2001 resulted in both of his legs being amputated. That's the latest. I'm Charlie Max.
4: वेलकम बैक सामेन. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं. मैं हूं आज की आपकी मेज़बान जो कि एवरी सैटरडे को होती हूं 11 से 2 नाहिद चट्ठा. मेरा और आपका साथ रहता है एवरी सैटरडे 11 से 2 तक. आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम पर और सुन रहे हैं 103.2 एफएम पर अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर. डैब पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर यानी के ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एकरिंगटन और मिल्टन कीन्स में. कीथली, इल्कली, स्किप्टन में हम जल्दी आप तक आ रहे हैं. लेकिन जब तक आप सुन सकते हैं हमें दुनिया के किसी भी हिस्से में, हमारी वेबसाइट पर www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio पर दुनिया के किसी भी हिस्से में आप हमें सुन सकते हैं और हमें एक्सेस कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं. एक से एक अच्छे प्रेजेंटर्स आपकी खिदमत में लाइव शोज लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे से गीत, अच्छी अच्छी सी बातें और उम्मीद है आप पसंद करते होंगे. हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स भी मिलते रहते हैं. बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का. तो सामीन, आज के प्रोग्राम में हम गीत लगा रहे हैं दिल पर, यानी कि जितने भी गीत हैं या तो वो दिल लव से शुरू होते हैं या फिर उसमें दिल आता है पहली लाइन में. तो उम्मीद है आप ये गीत इंजॉय भी कर रहे होंगे. एक से एक अच्छे खूबसूरत गीत और कुछ मेरी शायरी है जो कि आपने पसंद की, सराहा. चौधरी मुजफ्फर जी, बहुत शुक्रिया आपका. तुसी मैंने कह रही सी मीरपुरी दा, मैंने मीरपुरी बड़ी चंगी तरह बोलनी अच्छनी है. आहाँ, उसमें मीरपुरी में हाँ कहना होता है तो आगे से कहते हैं आहाँ, और मैं मुझे भी आता वो कहने आहाँ. तो आई लव मीरपुरी लैंग्वेज, आई लव मीरपुरी पीपल. सभी लोग बहुत बहुत बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं. तो हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब. हिट ऑफ द आवर जी आप सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, जो कि है तो पुराना गीत लेकिन कमाल है जी, आशा भोसले दा भी. इन्जॉय कीजिएगा.
5: Hit off the hour, brought to you in association with Pakistan Jewelers, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD9 5ER. Call now 01274 491 442.

जी सामीन, बहुत ही खूबसूरत आपने गीत सुना और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब। जो हमारा अगला गीत है वो है जी, वो भी दिल के हवाले से ही है। तो ये है जी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, दिल एक मंदिर है। तो बल्कि बहुत अच्छा गाना है, मंदिर को ऐसे लीजिएगा जैसे ये खुदा का घर है, मुसलमानों के लिए मस्जिद है, खुदा का घर है, क्रिश्चियंस के लिए चर्च है। इसको एक सिंबॉलिक लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

0: जी वेलकम बैक समेन, हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम में जो गीत पेश किए जा रहे हैं दिल के हवाले से पेश किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि डिस्कशन का टॉपिक होगा जो एक से दो बजे होगा, वो होगा दिखावे के हवाले से कि दिखावा हम लोग करते हैं, हम सभी करते हैं, हम बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, शादियों पे दिखावे होते हैं, लोग क्या करते हैं कि शादियों पे पैसे उधार लेके भी बड़ी बड़ी शादियां करना, दिखावा करना, अपने आप को बड़ा दिखाना, रिश्तों में समटाइम्स दिखावा होता है, आप दिल से कुछ और सोच रहे होते हैं, दिखाव कुछ और रहे होते हैं, दोस्तियों में दिखावे, धोखेबाजियां, हाय हाय कितनी बुरी बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके कीमती ख्यालात का इंतज़ार रहेगा, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि दिखावे पे, कि दिखावा जो है वो ना सिर्फ आपकी सोसाइटी को डैमेज करता है, आप लोगों को जहनी तौर पे, इमोशनली तौर पे डैमेज करता है, बल्कि जो बंदा कर रहा होता है उसको वो ज़्यादा डैमेज करता है। फ़र्ज़ करें पैसे उधार लेके दिखावा करके बड़ी बड़ी शादी कर ली, या कुछ और शो ऑफ करने के लिए आप ने कुछ कर लिया और फिर बाद में वो आपको फाइनेंशियल डैमेज है, आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, आपके जो नेगेटिविटी का आपके ब्रेन पे बोझ बढ़ता चला जाता है। सो इस तरह की बातें हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपके ख्यालात सुनना चाहूँगी। आप मेरे लिसनर्स मुझे पता है कि बहुत बहुत अच्छे माइंड के साथ हैं, बहुत बहुत अच्छी वाइज बातें करते हैं, क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक रखा है, जो भी मेरे लिसनर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी समझदारी की बातें की हैं। तो ये माशरे में मीडिया का भी एक वो होता है किरदार कि आप अच्छा एक ट्रेंड लेकर आएँ, और बहुत सी चीज़ें जो हमें पता होती हैं लेकिन हम मौके पे भूल जाते हैं, ख़ुद की सलाह है, हम किसी की सलाह क्या करेंगे, हमारी खुद की सलाह भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी जनाब, टाइम चेक करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर हो गई है तो हम अपनी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: नाम इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 12:18, बढ़ते हैं हम अपने ब्रेक की जानी, ब्रेक के फौरन बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। और बहुत से लोगों की कॉल्स मुझसे मिस हो गई हैं, प्लीज़ आप मुझे ब्रेक में दोबारा कॉल कर लीजिए। जरीना जी प्लीज़ आप भी दोबारा कॉल कर लीजिए मुझे। महबूब इलाही भाई, आपकी कॉल जो थी वो बीच में काटनी पड़ी क्योंकि गीत ख़त्म हो गया था, और एक और कॉल आ रही थी वो भी प्लीज़ आप मुझे दोबारा कर लीजिएगा क्योंकि लाइन थोड़ी बिजी थी, मैं ले नहीं पाई।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: जी वेलकम सामीन, आप सुन रहे हैं गीत जो कि हम दिल के हवाले से प्ले कर रहे हैं और अगला गीत भी दिल के हवाले से ही है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। एंजॉय कीजिएगा।

0: फुर्सत के रात दिन
1: दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। क्या बात है जी। वैसे मुझे नहीं लगता कि फुर्सत के कभी ऐसे रात दिन आए होंगे। क्या होता है जब जवानी होती है तो आप कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, पढ़ाई होती है, इतने काम होते हैं, घर वाले नहीं सैड से लगन देंगे, कभी कुछ लगा रहता है, कॉलेज से आओ, स्कूल से आओ, फिर उसके बाद यूनि में, और उसके बाद क्या होता है कि फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है। फुर्सत के रात दिन कब मिलते हैं, किसको मिलते हैं? मुझे तो नहीं लगता किसी को मिलते हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिले भाई। तो ऐसा है कि नाहिद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि आप ऑन एयर कम ही आती हैं, लेकिन अपने दिखावे के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। हमारे पास कॉल्स जो मिस हो गई, प्लीज़ आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम एक कॉलर से बात कर रहे हों तो फिर मुनासिब नहीं लगता उनकी बात काट के आपकी कॉल ली जाए। तो इंशाल्लाह आप दोबारा अगर फ़ोन करेंगे तो आप फिर मैं कोशिश करूँगी कि कॉल ले लूँ। उन लोगों की कॉल को मैं प्रेफर करूँगी जिन्होंने पहले 2-3 बार किया और मैं नहीं ले पाई, और जो लोग भी कर रहे हैं तो अगर बात छोटी हुई तो डेफिनेटली आपकी कॉल भी अटेंड हो जाएगी। कॉल्स थोड़ी सी बिजी होती हैं, इस वजह से आप मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हर बार कॉल अटेंड नहीं कर पाती। ये मत समझिएगा रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने अभी कॉल्स अटेंड की हैं और मैं करती भी रहूँगी। तो ऐसा करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और उसके बाद पंजाबी का होगा गीत अताउल्लाह खान की आवाज़ में, दिल तेरे ते फिदा पहली बार हो गया। हाय हाय, कितना मज़े का गीत है। लेकिन उस पर जाने से पहले एक छोटा सा कथा आपको पंजाबी का सुना देती हूँ। मैं अपने दिल दी आज तई तरफदारी तनई की थी, मैं अपने दिल दी अज तई तरफदारी तो नहीं की थी, मैनू लोकी बुरा आदन मैं इनकारी तो नहीं की थी, बुरा हो के भी महक मैं तुसा चंगियां तो चंगा हाँ, बुरा हो के भी महक मैं तुसा चंगियां तो चंगा हाँ, मैं चंगियाई दी कम अज कम अदाकारी तो नहीं की थी। तो जी, यही हमारा आज का टॉपिक है, अदाकारी करना, यानी कि होना कुछ और, बताना कुछ और, दिखावा कुछ और, असल कुछ और। बढ़ते हैं ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद गीत, और गीत के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात। हमारे साथ रहिएगा।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 0.
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
6: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਆ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ तो ऐसा है कि अब हम बढ़ते हैं अपने टाइम चेक की जानिब और टाइम चेक के बाद हम बढ़ेंगे अपनी कमर्शियल ब्रेक की जानिब कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा हमारा फ्लैशबैक गीत और फिर फ्लैशबैक गीत के बाद ऑफकोर्स हम बढ़ जाएंगे ख़बरों की तरफ और नेक्स्ट आवर जो हमारा होगा वो हमारा होगा डिस्कशन आवर डिस्कशन आवर में आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी और हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलर्स जो अभी भी उन्होंने मुझे कॉल्स की हैं मैं आपको सरप्राइज ब्रेक नहीं करना चाहती इतने अच्छे अच्छे कॉलर्स इतने इतने अच्छे ख्याल के साथ हमारे साथ होते हैं और फिर हम उनसे बात करते हैं और वो हमें बताते हैं हमारी इस्लाह होती है हमारी अपनी भी इस्लाह हो जाए तो बड़ी बात है हमने किसी की क्या इस्लाह करनी है जनाब तो क्या करते हैं हम पहले कर लेते हैं टाइम चेक फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रोग्राम के जो हमारी प्लान्स हैं उनकी जानिब
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: जी जनाब इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 12:43 जो कि अभी चंद ही सेकंड्स में 44 मिनट हो जाएंगे 44 minutes 12 पास्ट तो यानी कि हम नियरली 1:45 पे पहुंच चुके हैं और जी जी जनाब ये हो गए 44 minutes past 12 नाउ बढ़ते हैं हम ब्रेक की जाने मिलते हैं ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

भैया।

अरे दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे अड्डी तुसी बोले जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। होते होंगे ऐसे लोग भोले अभी भी कि सारा ड्रामा है। मुझे तो लगता है भोले कभी पहले भी नहीं होते थे। आपका क्या ख्याल है? ऐसा है कि अगला गीत जो है हमारा वो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत गीत है, सोनू निगम की आवाज़ में है, सोना सोना दिल मेरा सोना। ये जी फरमाइश आई है जी, और हम इसको प्ले करते हैं। मेरे अली चौधरी रुखसार साहब ने ये फरमाइश की थी। अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा। हम सब तो इंजॉय करेंगे जी। ये बहुत ही प्यारा गीत है, इस गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: हेलो वेलकम बैक सामिन, आपने गीत सुना सोना सोना दिल मेरा सोना। हाँ जी, दिल तो साढ़े सोने ही ने, सारिया दे ही दिल सोने ने जी, किसी दे दिल दी की गल करिए। तो क्या है कि आपको सुनाते हैं चंद अशार, क्योंकि टाइम रह गया है एक जोन सा कुछ सेकंड का टाइम है। हाय अल्लाह, शेर सुनाने का भी टाइम नहीं है, क्या किया जाए। ओके, फिर आप ऐसा करते हैं कि हम आपसे एक दफ़ा फिर याद दिला देते हैं कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 103.2 एफएम एंड 100.6 एफएम पर। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा दिखावे का परसोना, या ऊपर से कुछ और होना, अंदर से कुछ और होना, उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। जो नेक्स्ट आवर है, लाइव कॉल्स आपकी ली जाएंगी। ऑन एयर आने के लिए कॉल कीजिएगा 01274306666 पर। बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जाने।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: Star News Centre at 1. NATO says it's still confident in its defence capabilities despite the US withdrawing 5,000 troops from Germany. It's after the German Chancellor criticised Donald Trump's lack of strategy in Iran. Meanwhile, the president's threatened to blast the hell out of Iran if a deal isn't reached. The Prime Minister's calling for tougher action against people using anti-Semitic language during pro-Palestine rallies. It's after two Jewish men were stabbed in North London this week in the latest of a wave of violence against Jews in Britain. People organising the demonstrations say there's no link between them and the attacks, but Conservative leader Kemi Badenoch says they should be banned.
3: Anyone saying globalise the intifada or chanting from the river to the sea knows exactly what they're doing. They are trying to let people know that there is support for harming Jews. We need to make sure that that is stopped completely.
2: The king's been shown slavery artefacts from Bermuda's past during his visit to the island. Charles has been meeting youth groups, conservationists and leaders. Before that, he was in America for a state visit, which has been described as a huge success. Historian Sir Anthony Seldon says it'll stand out for all the right reasons.
4: He was landing in both speeches some really significant statements about Donald Trump and about America and about Ukraine and about the environment. I mean, where does it stop?
2: Police have confirmed that no items of a suspicious nature were found at last night's cancelled Peter Kay concert. A teenager has been arrested on suspicion of carrying out a bomb hoax. In sports, Ipswich have taken an early 2-0 lead at home to QPR, knowing a win will guarantee a return to the Premier League. Middlesbrough, who could also finish second, are drawing 1-1 at Wrexham, while Millwall, who are also in with a chance of finishing in the top two, are being held 0-0 by Oxford. And Princess Charlotte is turning 11 today. William and Kate's daughter is third in line to the throne behind her dad and older brother George. That's the latest. I'm Charlie Maggs.
0: वेलकम बैक समीन। जी हाँ, कितनी जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैं तो बड़े मज़े से लहरा लहरा के आपको अशार सुनाने लगी थी, और फिर मैं दिखा मैं क्या, ओ माय गॉड, ए ते पला हो जाए, कुछ सेकंड रह गए खबरों के बीच, नठो दौड़ो। और जल्दी जल्दी बोल के मैंने आपको खबरों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, 2 घंटे गुजर चुके हैं हमारे इस प्रोग्राम को, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत सी कॉल्स मुझसे मिस हो गई हैं, सारे जी आपकी कॉल भी मिस हो गई, ज़रा चंगा नहीं लग गया, लेकिन की करिए। और चौधरी फरियाद जी, आपसे तो बात हो गई शुक्र अल्लाह का, क्योंकि आपकी भी पहले कॉल मिस हो गई थी। फिर मुझे दिल में मलाल सा रहता है कि इतने अच्छे कॉलर्स, इतने अच्छे मेरे लिसनर्स, उनकी उनसे बात ना हो पाई, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली हैं। तो ऐसा है कि जो एक तो आपको दोबारा से याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं सनराइज़ रेडियो, मैं हूं आपके प्रोग्राम की मेज़बान नाहिद चट्ठा, मेरा और आपका साथ रहता है ठीक 11 से 2 बजे तक एवरी सैटरडे, यानी कि हर हफ्ता के रोज सनराइज रेडियो 100.6 एफएम पर और 103.2 एफएम पर अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर आप सुनते हैं, डेप पर आप सुनते हैं, ब्रेडफोर्ड, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में, कीथली, इल्कली एंड स्किप्टन में भी हम जल्दी आ रहे हैं धूल धमकों के साथ, लेकिन जब तक वहाँ के लोग और बाकी दुनिया के लोग ऑनलाइन हमें सुन सकते हैं वेबसाइट पर, यानी कि ऑनलाइन www.sunriseradio.fm या www.sunrise.radio पर। तो आपका और हमारा साथ रहता है 24/7, बहुत एक से बढ़कर एक प्रेजेंटर्स आते हैं अपने टाइम से और आपका दिल बहलाते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं, आपकी खुशी में, गमी में, गर्मी में, सर्दी में, दिन में, रात में, हर तरह के मौसम में, हर तरह के दिल के मौसम में भी और बाहर के मौसम में भी 24/7 सनराइज रेडियो आपके साथ होता है। इस प्रोग्राम में जो हमारा स्केड्यूल होता है कि प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होता है फ्रॉम 1 to 2 हमारा डिस्कशन आवर होता है, जिसमें हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारी कम्युनिटी से लोग हैं, वो आते हैं और एक टॉपिक जो हमने चूज़ किया होता है उस पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार करते हैं और हमें हम कोशिश करते हैं कि वो बातें हम अपने आप को दोबारा से याद दिलाएं जो हमें पहले से भी पता है। अगर हमारे अखलाकियात में कोई कमी आती जा रही है, माशरे का रुझान किसी और तरफ जाता जा रहा है जो कि इस्लामी कदरों या अखलाकी कदरों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो उसकी तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह रही थी कि हमने किसी की इस्लाह क्या करनी है, ख़ुद की भी इस्लाह हो जाए तो बड़ी बात है। हमारे कॉलर्स हमारे साथ होंगे, आप हमें प्लीज़ टेलीफ़ोन कीजिएगा अगर आपका इसके बारे में कुछ ख्यालात का इजहार करने का मूड है, तो आप 01274306666 पर बात कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि दिखावा करना, ऊपर से कुछ और होना, दिल से कुछ और होना, या फिर आप दुनिया में दिखावा करना, उससे क्या डैमेजेस होते हैं सोसाइटी को भी और सबसे ज़्यादा जो कर रहा होता है उसकी ज़ात को भी। तो आपकी टेलीफ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जब तक आपकी टेलीफ़ोन कॉल्स का मैं इंतज़ार करती हूँ, आपको ये चंद अशआर सुनाती हूँ, फिर हम हिट ऑफ द आवर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर गाने चल भी रहे होंगे तो मैं आपको आपकी कॉल अटेंड कर लूँगी और फिर मैं आपको ऑन एयर ले जाऊँगी गाने के फ़ौरन बाद। अशआर कुछ यूँ हैं जनाब, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, बस दिखा दिखावे की गल है, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। वैसे यह जाती है बंदा हाथ मिला दिया तक ठीक है, उन सारे गले तो नहीं बंदा मिल सकता। घरों में नाम ना थे, नामों के साथ ओहदे थे, देखिए ये भी एक रिवाज है, घरों पे जब घरों पे नाम लिखते हैं ना बाहर तख्ती पे, उसकी बात हो रही है कि घरों पे नाम ना थे, नामों के साथ ओहदे थे, ये है दिखावा। बहुत तलाश किया कोई आदमी ना मिला, तमाम रिश्तों को मैं घर पे ही छोड़ आया था, तमाम रिश्तों को मैं घर पे ही छोड़ आया था, पर इसके बाद मुझे कोई अजनबी ना मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। शाबाश भाई थोड़ी किस्मत है। खुदा की इतनी बड़ी कायनात पे मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही ना मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। अब कुर्बतों की दूरी, कितनी खूबसूरत बात की है इस शायर ने कि कुछ लोग हमारे सामने होते हैं, हमारे पास बैठे होते हैं, लेकिन दिलों से दूर ही होते हैं जनाब। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और मुझे कभी ना मिला। यही तो गल है, यही तो बात है, जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें, जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर से रहें। तो जनाब हम बढ़ते हैं अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब, आपकी टेलीफोन कॉल्स दिखावे के बारे में बात करने के लिए, अपने कीमती ख्यालात का इजहार करने के लिए और हमें अच्छा मशवरा देने के लिए। इंतज़ार रहेगा 01274306666 पर। सुनते हैं खूबसूरत सा गीत और गाल हो रही है दिलांदी, दिल के बारे में गीत है, हिट ऑफ द आवर पे जाते हैं।
5: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जनाब दिल तड़प तड़प के कह रहा है आभिजा, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना। अब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एम खान साहब। हम खान साहब को ऑन एयर लेते हैं और फिर सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में, दिखावे से, दिखावे के हवाले से। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: जी
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम खान साहब, आपका आवाज़ आ रही है?
1: जी जी आप बिल्कुल आवाज़ें आ रही है।
0: कैसे हैं आप?
1: बस आपकी दुआ चाहिए, बेटी की दुआ और सब सुनने वालों की दुआओं की ज़रूरत है।
0: आपके लिए ढेर सारी दुआएं। और क्या कहना चाहेंगे आप आज के टॉपिक के बारे में कि दिखावा जो हमारे मुआशरे में एक नासूर की तरह फैलता चला जा रहा है और लोग इसको एक आदत समझने लग गए हैं। अगर कोई बुरी चीज़ ख़त्म नहीं की जाती तो वो पहले एक रवायत बनती है, फिर वो आदत बनती है, फिर वो मुआशरे का हिस्सा बन जाती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
1: फिर ज़रा इरशाद फरमाएं, क्या बताया
0: जी? दिखावा, जो दिखावा। लोग दिखावा करते हैं, समटाइम्स ऐसे होते हैं बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, या फिर अपनी दौलत का दिखावा करना, शादियों पर दिखावा करना, इस तरह की जो चीज़ें हमारे मुआशरे में फैलती जा रही हैं।
1: माशाल्लाह मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत मौजू है वो, जिसकी माशरे को ज़रूरत है। हमारे माशरे में ये कैंसर की तरह फैल रही है ये बीमारी
0: जी।
1: हमारे क़िता कश्मीर में एक दानश्वर शायर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही पंजाबी में। वो कहते मैं वड़ा होर तमामी निके सुनो पाई नसीहत मेरी, आखन जिसनू वड़ा रब दे बंदे। यानी अपने आप का जो मुहासबा करने की जिसकी जरूरत थी उस तरफ ना चला, एक ऐसी बीमारी की तरफ तू चल पड़ा है जिस बीमारी का कोई ठिकाना या मुंह सिर ही नहीं। इतनी वसी बीमारी है, फैलती जा रही है। ऐ इंसान तू उस बीमारी में मुब्तला हो चुका है, कभी तुमने सोचा भी नहीं थे तू किस बीमारी में मुब्तला हुआ है। काश तू सोच लेता कि मैं जो तेरे अंदर आ गई है, मैं जो काम करता हूँ, मैं जो फैसला देता हूँ, ये मैं ही निकाल दे, बल्कि तू कर, ताकि जो तुझसे नीचे वाले लोग हैं तो अपने आप को उनसे नीचा समझ, दिखलावा ना कर। दिखलावे की अगर नमाज भी पढ़ेगा तो क्यामत वाले दिन वो दिखलावे की लोग इसलिए नमाज पढ़ते हैं। मतलब मैं हूँ तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, लोग मुझे बल्ले बल्ले खान जी बल्ले बल्ले कर जोड़ी आई तो
0: माया
1: दुनिया में बल्ले बल्ले तेरी तो जरूर होगी, लेकिन क्यामत वाले दिन हम इस बल्ले का बल बना देंगे, वो तुझसे हिसाब लेंगे।
0: पकड़ोगी अच्छी
1: तेरी वजह से लोगों के घर तबाह बर्बाद हुए, लोग नस्ल तक कर्जदार बने, तेरी बल्ले ना गई, तू अपने बल्ले में मुब्तला रहा और तकब्बुर और गुरूर में छाया रहा, और उस तकब्बुर गुरूर की वजह से लोगों के घर उजड़ गए। आज तू लोगों के घर आबाद करता, तू ऐसी रवायात कायम करता जिस रवायात से कौम और मिल्लत को तकदीर मिलती, लोगों को इस्तफादा करने का मौका मिलता, बजाय के तूने अपनी बल्ले बल्ले में लग रहा लोगों के सामने ऐसी बातें करता, ऐसे नमूने पेश करता है कि तेरे नमूने सब कुछ ये तेरी कब्र से पहले ही खत्म हो जाएंगे।
0: बिल्कुल
1: काश तू ऐसा कोई नमूना पेश करता कि तेरे जाने के बाद लोग कहते कि ये हमारा लीडर, ये हमारा जो सरबराह घर का है, उसने घर में कंट्रोल किया और उसकी वजह से औलाद ठीक हो गई। औलाद बहुत आदमी मुझे ऐसे ही मिले, अरे बाबा जी कोई दुआ करो। मैं क्या क्या दुआ करा, आखिर ले सारा जरा बच्चा या बच्ची वो अल्लाह अल्लाह के रसूल के खिलाफ कभी थोड़ी बहुत गुस्सा की यानी वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश करना, जे वो बाउंड्री क्रॉस कर दी तो उस वालदेन के लिए भी और उस बेटे बेटी के लिए भी तो भाई बर्बादी है।
0: बिल्कुल,
1: ये चंद रोजा जिंदगी है।
0: बिल्कुल, और इसको हम दिखावे में लोगों के आगे अपना अंदर से कुछ और होना, बाहर से कुछ और होना बन के हम ये ना हम जाया ना करें।
1: दिखावा एक मियां साहब फरमाते हैं, यानी जिस तरह तो अंदर माल माल जो सफेद होता कपड़ा, तो फरमाते हैं तो माल माल की तरह बाहर से तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अंदर तेरे अंदर जो गलादत छुपी हुई है, जो बुग़्ज़ और कीना और हसद और दूसरों के बारे में तो कैंसर की तरह बीमारियां, हार्ट अटैक, वो दूसरी मूजी बीमारियां हासिल करने में सुबह रात तो बसर कर देता है। काश तू जैसा बाहर से है
0: वैसा ही अंदर से होता,
1: तो क्या बात है, लोग तुझसे इस्तफादा करें।
0: क्या बात है, बहुत कमाल बात की, बहुत कमाल बात की खान साहब आपने। बल्कि ये हमारी हमें अपनी इस्लाह के लिए भी जरूरी है कि हम ऐसी चीजों को याद रखें। बहुत शुक्रिया खान साहब,
1: शुक्रिया,
0: जजाकल्ला,
1: आपने मुझे टाइम दिया,
0: बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा लगा आपके आना। ओके, अल्लाह हाफिज जी। समीन, ये तो हमारे खान साहब हमेशा बहुत ही इल्म वाली और बहुत वाइज और समझदारी की बातें लेकर आते हैं हमारे हर टॉपिक में, और हमें बहुत ही इस्तफादा हासिल होता है इनके इल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे और आपको बेशुमार खुशियां और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो सामीन, हमारा ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम थोड़े से टाइम से ओवर चले गए हैं, टाइम चेक करके ब्रेक पे बढ़ते हैं और फिर अपने नेक्स्ट कॉलर को लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हुआ जाते हैं 1:18, बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
6: Looking for your dream home in Bradford?
7: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6, and 8-bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
6: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
7: Bellevue Residences.
6: Luxury, space, and style.
7: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
0: वेलकम बैक सामीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे आपके हमारे सबके जाने माने मशहूर शख्सियत हो गए हैं जी, अब तो चौधरी फरियाद जी, हम उनको लाइन पर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
8: जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करा जी करा।
0: क्या हाल चाल है चौधरी साहब, कैसे हैं आप?
8: जी नहीं जी, तेरी दुआएं ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक हो?
0: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआ। तो आप आज क्या इस टॉपिक के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि दिखावा करना, अंदर से कुछ और होना, बाहर से कुछ और होना?
8: जी बिस्मिल्लाह करा, साडे मोहतरम अहम खान साहब आए ने, माशाल्लाह पढ़े लिखे ने और उन्हां को बड़ी दीनी तालीम है जे, ते असी ते अनपढ़ बंदे हां, पर फिर भी असी अपने बसात दे मुताबिक कुछ अर्ज करांगे जे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
8: जी, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਅਕੀਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇ
0: ਹਾਂਜੀ
8: ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ
8: ਜੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿਖਲਾਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ
0: ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ 500 ਦੇਣ ਦਾ
8: ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ
0: ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
8: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿਆਂ ਨਾ
0: ਕਿ
8: ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਦਿਆਂ ਜੀ
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ
8: ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 500 ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਧਰੋਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ
8: ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ
0: ਜਾਂ
8: ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲਿਪਾਸ ਜ਼ਰਾ ਮਾੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਪਾਸ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ
0: ਬਿਸਮਿਲਲਾ
8: ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਭਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਵਤ ਅਮਲ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਫੇਰੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੀ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕੀ ਆਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਵਤ ਅਮਲ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਫੇਰੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ
0: ਵਾਹ ਸਹੀ ਗੱਲ
8: ਮਨੋ ਸਜਦਾ ਮਸਜੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਨੋ ਸਜਦਾ ਮਸਜੂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਮੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੀ
0: ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ
8: ਬਦ ਗੋਈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਆਨੀਆਂ ਗਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਕਾਨ ਤੇ ਕੀ
0: ਫਾਇਦਾ
8: ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮੁਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚੇ ਸਮਝਿਆ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਕੁਫਰ ਦਾ ਮਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਕਰਕੇ ਤਨਕੀਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਨਾਰ ਸੋਚੀ ਨਾਮ ਵਰੀ ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮਦ ਨਾਮ ਵਰੀ ਦਿਖਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮਦ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਸੋਚੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸਲੀਮ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੋਚੀ
0: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਬਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ
8: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
8: ਆਮੀਨ
0: ਆਮੀਨ ਸਮਾ ਆਮੀਨ ਜੀ ਸਮੀਨ ਹਮਨੇ ਬਾਤੇ ਸੁਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਹਿਲ ਅੰਗੇਜ਼ ਬਾਤੇ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਆਸਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤੋਂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿਆ ਇਹੀ ਕਿਆ ਮਿਆਰ ਹੈ मैं ये सोचती हूँ कि हम क्यों अपने मुआशरे को डिग्रेड करते हैं, नहीं जी यहाँ पे लोगों को क्या पता होगा, इस तरह नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। नहीं, इतने अच्छे अच्छे समझदार, जीरक, वाइज लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, बस हम उस चीज़ को छेड़ते ही नहीं हैं, हम डिस्कशंस पे आते ही नहीं हैं। जब हम आते हैं तो कितनी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती हैं और हमारी अपनी इस्लाह होती है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों की बात सुन के। आप अगर कोई और दिखावे के बारे में अपना ख्यालात का इजहार करना चाहें तो आप हमें ज़रूर टेलीफ़ोन कीजिएगा 01274-3066666 पर। हम बढ़ते हैं इस गीत की जानिब, ये छोटा सा गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और फिर हम हमारी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपसे दोबारा एक और गीत होगा अकरम राही की आवाज़ में, और फिर आपसे मुलाकात होगी। इस दौरान अगर हमारे किसी भी कॉलर की कॉल आ गई तो फिर हम उनसे बात करके उनको, जैसे ही गीत ख़त्म हो तो हम उनको ऑन एयर ले आएंगे। तो बढ़ते हैं इस गीत की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, ब्रेक के बाद फ़ौरन गीत होना था, लेकिन जैसे मेरा वादा था, जैसे ही हमें हमारे कॉलर हमारे पास होंगे हम अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, तो डेफिनेटली हम वो उन्हें प्रायोरिटी देंगे और उन्हें ज़रूर ऑन एयर लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही अच्छी बातें करने वाले भाई चौधरी रुखसार साहब मौजूद हैं मैनचेस्टर से, और हम उनसे सुनते हैं कि उनके कीमती ख्यालात इस टॉपिक के बारे में क्या हैं। तो बढ़ते हैं अपने स्कॉलर की जानेब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरमा मुकरमा मुअज़्ज़मा अली जनाब इज़्ज़त माब साहिब सदर ग्रामी कदर और हर लज़ीज़ शख्सियत और मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त काबिल रिफ़त काबिल अज़मत आपी नहीब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बहुत शुक्रिया इतनी इज़्ज़त देने का। जो इज़्ज़त वाले होते हैं वही दूसरों को इज़्ज़त देना जानते हैं। तो आप का बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने सोचा कि आप हमें अपने कीमती ख्यालात से नवाजते हैं। तो हमें इंतज़ार है आपके इस टॉपिक पे कि आपके पास क्या बात है जो हम सुने।
1: सबसे पहले तो यानी कि आप मुझे मेरा शुक्रिया अदा करके तो मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रही हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें शुक्रिया तो आपका अदा करना चाहिए कि हाल कि आपके प्रोग्राम के तवसल से हमें हमारे इल्म में इजाफा होता है और हमें आगाही हासिल होती है और हमारी रहनुमाई होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माशाल्लाह जैसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह आपका ये रेडियो माशाल्लाह ये स्टेशन ये प्लेटफार्म हमें फराहम करता है, यानी कि आपको इस पर फख्र होना चाहिए। यकीन करें कि हम इससे मुतफीद होते हैं। तो आप प्लीज़ मैं आपसे दस्तबस्त अपील करता हूँ कि अब मैं ना चीज़ का मैं हकीर का इनके मैं छोटे से बंदे का आप शुक्रिया अदा करके मुझे अपनी नज़रों में मत गिराइए।
0: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलिए टॉपिक पे बात करते हैं।
1: माशाल्लाह, पहले तो मेरी माजरत कबूल कीजिएगा कि मैं आपका प्रोग्राम जो है ना मैं पहले चला गया था, लेकिन मैंने जो शख्सियात आई थी माशाल्लाह, क्योंकि वो कहते हैं कि जिनके उनके सामने जिन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में माशाल्लाह अपनी इल्मी गुफ्तगू से माशाल्लाह हमने हमें रोशन और मुनव्वर फरमाया है, तो मेरा तो इल्मी लेवल उनके मुकाबले में जीरो है। यकीन करें जीरो, बल्कि जीरो बटा जीरो है। हैं जी, तो मैं सब उनसे सीखता हूँ और मैं बस ये तो छोटा सा तालिब इल्म आता हूँ। मेरा ख्याल है जितनी वो गुफ्तगू कर चुके हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे जैसा एक तालिब इल्म जो है उसमें मुसीद कोई इजाफा करेगा, लेकिन आप जैसी शख्सियात का जो हुक्म था ठीक है कि आपने आना है, तो आपका हुक्म तो कहते हैं ना कि सारा आंखों पर, मेरे लिए कहते हैं कि वाजिब हो जाता है जब आप जैसी माशाल्लाह शख्सियात मेरे जैसे छोटे बंदे को हुक्म करती हैं। तो
0: अरे हुक्म की क्या बात है, हम आपका अपना प्रोग्राम है, हम सब मिलके करते हैं और हम सब की अपनी अपनी एक रौनक होती है। तो इस बहुत अच्छा लगता है कि आप आते हैं, आप ऑफ एयर भी बात करते हैं और फिर मैं इनक्रेज करती हूँ आपको कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप ऑन एयर भी ज़रूर बातें करें, ताकि सिर्फ मुझसे करेंगे तो मैं अकेली आपकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगी, अगर आप ऑन एयर करेंगे तो फिर जितने भी लिसनर सुन रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल होंगे और ये सदका जारिया होगा कि किसी के कानों में अच्छी बात करना भी कितनी कितना अच्छा अमल होता है। तो डेफिनेटली अगर आप मुझे कहेंगे ऑफ एयर तो मैं आपको इनक्रेज करूँगी कि डेफिनेटली आप आएँ ऑन एयर हमसे बात करें, और बहुत ही आपका बड़ापन है कि आप फिर बात सुन के आ भी जाते हैं, बहुत शुक्रिया। चले हूँ टॉपिक ते गल दसो ना।
1: अल्लाह ताला आपको सलाम रखे। सबसे पहले तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत और इतना हमेशा की तरह माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में जो भी टॉपिक होता है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा बहुत उम्दा और बहुत ही म्यारी होता है। तो जैसे आपने अभी ये टॉपिक जो रखा हुआ दिखावा, अब इस पे कहते हैं कि 3 घंटे क्या जितनी भी पूरा दिन भी इस पे बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि बात बढ़ती जाती है, उसको समेटना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कहले तो एक फरमान है मौला अली अलैहि सलाम का, सरकार फरमाते हैं कि दिखावा करने वाले शख्स की 3 अलामात होती हैं, यानी कि उसकी 3 निशानियां होती हैं, उसकी 3 कैटेगरियां होती हैं।
0: अच्छा
1: है जी, क्योंकि एक तो वो इंतहाई सुस्त का होता है यानी कि सुस्ती करता है ठीक है।
0: अच्छा,
1: दूसरा लोगों के सामने जो होता है ना वो यानी कि सुस्त रहना पसंद करता है ठीक है, यानी कि बहुत सुस्त होता है और लोगों के सामने चुस्त रहना पसंद करता है ठीक है। और तीसरी जब उसकी तारीफ की जाए तो ज्यादा अमल करता है और मजम्मत की जाए तो अमल में कमी कर देता है, जिनके ये एक रियाकारी में आता है, ठीक है, जैसे दिखावा रियाकारी ये एक ही होता है,
0: बहुत गहरी बात है, बिल्कुल
1: जी। तो माशाल्लाह जैसे हम एक हमारा छठा कलमा है जैसे रद्दे कुफर मेरे ख्याल, उसमें भी ये पूरा कलमा भी अगर पढ़ा जाए तो उसका तर्जमा भी पढ़ा जाए ना, तो उसमें भी ये शिरक ये कुफर ये रियाकारी सब उसमें आते हैं, क्योंकि हालांकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, हम सब ये माशाल्लाह छह कलमे पढ़ते हैं,
0: याद करते हैं जी,
1: ऐसे ही है ना, तो उसमें ये है। और रियाकारी ये दिखावा जो होता है, जैसे अभी मैंने तो शख्सियात को नहीं सुना माशाल्लाह, उन्होंने यकीन ही बहुत अच्छी खूबसूरत बातें की होगी, ये जैसे सोशल मीडिया आ गई, अब सोशल मीडिया में जो दिखावा करते हैं, ये देखो जी हमने आज ये बनाया है, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम ये पहन रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, ये आप किस को दिखा रहे हैं,
0: कितनी बुरी बात है वाकई, अपने डाइनिंग टेबल की अपने खानों की तस्वीरें करके सोशल मीडिया पे डालना, किसी को क्या, आप जो भी खाओ, अजीब बात है वाकई।
1: लेकिन ऐसी बातें अगर देखो कोई मेरे जैसा ऐसा बंदा होता जो फोर्ड नहीं कर सकता, जो वो पहन नहीं सकता, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, यकीन करे वल्लाह बखुदा आपी नहीं जी, मैं मेरी जिनके जितनी लाइफ गुजर चुकी है ना, अब कम रह गई है, ठीक है, जितनी भी है, ठीक है, तो मैंने कभी सोशल मीडिया पे कोई ऐसा, मैं ईद वाले दिन भी जब कपड़े पहनता हूँ तो मैं जल्दी ईद पढ़ के आके उतार देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोग वहां पे जो होते हैं ना, वहां पे हर बंदे के पास तो ये वीडियो है, हर बंदे के पास तो मोबाइल है, हाँ जी, वो इबादत काम करते हैं, ठीक है, वो जनाब वीडियो ज्यादा बनाते हैं, चाहे वो तौबा फातबा मदीना मुनव्वरा हो या मक्का मुअज्जमा हो, वो इबादत की तरफ कम ख्याल करते हैं, वो जनाब वीडियो बनाने में ज्यादा, फिर वो सोशल मीडिया पे।
0: ये पॉइंट आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने ये दिखाया बताया है हमें कि ये चीज वाकई बहुत होती जा रही है, और सुना है कि इस बार वहां पे खाना काबा में तवाफ के दौरान भी लोग वीडियोस बनाते हैं और अपनी वो करते हैं, तो उसकी पाबंदी लग रही है बाकायदा, के ध्यान आपका हज की तरफ होना चाहिए या उम्रा की तरफ, और वीडियोस बन रही हैं और इस तरह की चीजें हो रही हैं, दिखावा हो रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया हमें।
1: बेशक वो दूसरी बात सिस्टर आप देखें, जैसे हम शादियों पर जाते हैं, ठीक है
0: जी,
1: तो हम जो शादियों पर जाते हैं तो हम दिखावा करने के लिए लोगों से फिर कर्ज ले लेते हैं, फिर उधार ले लेते हैं, फिर चुक चुका के, जैसे कहते हैं ना हम चुक चुका के, हैं जी, तो वो शादी करते हैं, फिर वो उधार देना, वो कर्जा उतारने के लिए हमें पता नहीं क्या क्या बैलेंस पड़ते हैं, फिर झूठ बोलना पड़ता है, फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है,
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: फिर बोले ना यार आपने ऐसा क्यों किया, तो फिर कहते यार नाक नहीं रहती है जी,
0: तो
1: और यार नाक नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि नाक नहीं रहता, इसका मतलब है कि थोड़ा कख नहीं रहता।
0: सही कह रहे हैं आपने, बहुत अच्छी बातें की, एग्जैक्टली
1: कम अज कम वो कहते हैं ना कि एक लफ्ज होता है मुकफाते अमल, है
0: जी,
1: मुकफाते अमल का मतलब भी ये है कि जो आप करते हो ना कल वही आपके साथ होगा,
0: एग्जैक्टली,
1: ठीक है, जो आप किसी को जन्नत में पहुंचा कर ना वो सजदा में गिर देते हैं ना जन्नत के लिए, तो ये आप किसको दिखा रहे हैं, एक बंदे को आप जन्नत में पहुंचा कर तो फिर जन्नत की ख्वाहिश के लिए आप सजदे कर रहे हैं, तो वो आपके सजदे फजूल हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आप रियाकारी कर रहे हैं,
0: बिल्कुल। सॉरी चौधरी रुखसार भाई, आपकी इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, तोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर नॉर्मल ब्रेक होती तो मैं थोड़ी देर बाद ले लेती, लेकिन अजान ब्रेक है तो इसका फिर टाइम, तो इतनी अच्छी बातें, स्टॉप करने का दिल नहीं चाह रहा मेरा, बहुत ज्यादा माजरत के साथ,
1: प्लीज
0: बहुत शुक्रिया,
1: जिस तरह आपके लिए जरूरी है ना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है, और आप प्लीज मुझे माजरत करके इस तरह ना कीजिएगा, प्लीज आप ब्रेक लीजिए, और अगर मेरी कोई बात किसी मारी माई किसी बहन किसी भाई किसी बुजुर्ग को बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के सबसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन है हकीकत।
0: नहीं नहीं, आपने सब बातें बहुत अच्छी की हैं, बढ़ते हैं अजान ब्रेक की जानिब, और अल्लाह ताला आपको जजा दे अच्छी बातें करके हमें हमारे कानों तक पहुँचाने तक।
1: अल्लाह
0: जी सामीन, बढ़ते हैं अजान ब्रेक की जाने, मिलते हैं अजान ब्रेक के फौरन बाद, हमारे साथ रहिएगा।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है, आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

الكبار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
5: जी आसामीन, अजान ब्रेक के बाद फौरन कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया था और हम आपको अब बताते हैं टाइम क्या हुआ चाहता है।
6: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
5: सामने इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 1:46 यानी कि 46 minutes past 1। और हम बढ़ेंगे अब अपने फ्लैशबैक गीत की जानिब और आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 01274 30 66 66 पर।
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

समय आपने गीत सुना अकरम राही की आवाज़ में दिल दियाँ कुकां, क्या बात है जी, शामो शाम शराबा पी के करिए याद मशूकों, क्या एक्टिविटी है क्या अच्छी मसरूफियत है। बहरहाल हमारा जो ये आवर गुजरा उसमें हमने बहुत ही पुरहासिल गुफ्तगू की और हमें लास्ट हमारे कॉलर जो थे वो चौधरी रुखसार साहब, उन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत बातें की। उन्होंने इंटरनेट पे मीडिया पे दिखावे के हवाले से बात की और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। हमारे भाई चौधरी फरियाद साहब ने बहुत अच्छी बातें की, एम खान साहब ने बहुत अच्छी बातें की। इसी तरह से उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में लोग ऑन एयर आके बात करेंगे। बहुत से कॉलर्स ने मुझे फ़ोन किया लेकिन वो ऑन एयर नहीं आना चाहते थे। जब हम ऑन एयर आके अच्छी बात करते हैं तो एक तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, दूसरे हमारी बात जितने हज़ारों कानों में जाती है उतना ही हमें इसका अजर भी मिलता है। तो जिन्होंने की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होगी और बहुत से लोग ऑन एयर आके चाहे छोटी सी बात अच्छी करें तो ज़रूर करेंगे। तो जनाब हमने अच्छे अच्छे से गीत भी सुने और अच्छी सी बातें भी हुई, कुछ शायरी भी हुई। प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लास्ट ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी शायरी आपको सुना के और उसके बाद लास्ट ट्रैक की तरफ बढ़ूंगी जो कि हमें ले जाएगा ठीक खबरों की जानिब जो कि प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो कहते हैं जी, सुनो दरवेश लोगों में बड़े इसरार होते हैं, सुनो दरवेश लोगों में बड़े इसरार होते हैं, शजर जो फल नहीं देते, शजर जो फल नहीं देते वो सायादार होते हैं। निकालो तीर तुर्कश से, मुझे कुछ फूल रखने दो, निकालो तीर तुर्कश से, मुझे कुछ फूल रखने दो, अदावत में मोहब्बत के भी कुछ आसार होते हैं। ये दस्तारों के शिमले तो बस होते हैं दिखावे के, ये दस्तारों के शिमले तो बस होते हैं दिखावे के, जो सरदारी के काबिल हों तही दस्तार होते हैं। यानी कि जिस तरह से हमारे तीनों भाइयों ने बहुत अच्छी बात की थी कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं होता, जो असल चीज़ होती है वो पता चल जाती है। तो दस्तारों के शिमले जो होते हैं आपकी पगड़ियों के, वो दिखावे के होते हैं, जो असल सरदार होते हैं वो तही दस्तार होते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। फ़कीरों का भी खाते हो कहाँ की ये शराफत है, फ़कीरों का भी खाते हो कहाँ की ये शराफत है, शरीफों के तो कुत्ते भी बड़े खुददार होते हैं। क्या बात है जी, बहुत अच्छा शेर है। फ़कीरों का भी खाते हो ये कहाँ की ये शराफत है, शरीफों के तो कुत्ते भी बड़े खुददार होते हैं। हम ऐसे लोग हैं साजिद जो मरकर भी नहीं मरते, हम ऐसे लोग हैं साजिद जो मरकर भी नहीं मरते, जो जवाहर टूट जाने से कहाँ बेकार होते हैं। यानी कि जो हीरे होते हैं वो टूट भी जाएं तो छोटा हीरा बन जाता है ना, किसी और चीज़ छिपा के पालो तो जवाहर टूट जाने से कहाँ बेकार होते हैं। क्या खूबसूरत अशआर है। तो अब मैं एक गीत की जानिब बढ़ूंगी, लेकिन ये जो गीत होगा हम पूरा नहीं प्ले कर पाएंगे क्योंकि ये गीत हमें ले जाएगा स्ट्रीट खबरों की तरफ। इसके साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, तमाम मेरे सुनने वाले, तमाम कॉलर जिन्होंने मुझे फ़ोन किए, ऑन एयर बात की या ऑफ एयर बात की, सबसे बातें बहुत अच्छी हुई, बहुत इल्म वाली बातें, बहुत समझदारी की बातें, बहुत जीरक लोग। मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे लिसनर्स इतने समझदार हैं और मेरे लिसनर्स इतनी अच्छी बातें करते हैं। तो मैं भी हमेशा पहले से ज़्यादा तैयार होकर आऊँ, बेहतरीन मवाद आपके लिए लेकर आऊँ, बेहतरीन थॉट्स लेकर आऊँ ताकि ये मेयार कायम रहे। इसी तरह से आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। आपसे नेक्स्ट सैटरडे हफ्ता के रोज़ आपसे बात होगी। ज़िंदगी

रही तो आपसे मुलाकात रहेगी हफ्ता के रोज़ 11 से 2 बजे तक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।

0: buying or selling a property. Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
1: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
0: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274 559565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303, दास ब्रैडफोर्ड 7230303।
4: Looking for your dream home in Bradford?
5: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
4: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
5: Bellevue Residences.
4: Luxury, space and style.
5: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
2: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
1: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
3: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
2: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.

Will you dance with me?

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: कुल्ला नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

लिए जरूर बना होता है, दिल में प्यार, प्यार की चाहत।

0: music.
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
3: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
3: Luxury, space and style.
2: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

ये मासूम बच्चे क्या इसी तरह अपना माजी गवाते, हाल गुजारते और मुस्तकबिल से बेखबर रहेंगे? इन्हीं में है इब्न अल-हिशम और अबू अली सीना, जो तालीमी निज़ाम में मौजूद तबकाती तफरीक का शिकार हैं। ये इनकी मजबूरी है या हमारी कमज़ोरी? क्या इनको भी अपने तालीमी हुकूक बराबरी की बुनियादों पर नहीं मिल सकते? इसका हल सिर्फ और सिर्फ, नो डिफरेंसेस कैन ओनली मेक द डिफरेंस।

0: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230-3030, दास ब्रैडफोर्ड 7230-3030।

0: नफ्सें ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल।

0: और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Buying or selling a property? Need help with a lease or help to buy? At Nation Property Lawyers, we make property transactions smooth and stress-free.
4: And that's not all. We also help with wills, powers of attorney, and sponsorship declarations for your loved ones abroad.
3: One trusted team for your property and legal needs. Nation Property Lawyers is here for you. Call us now on 01274-559-565 or visit nationpl.co.uk. Nation Property Lawyers, based locally, trusted nationally.
5: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

लंबी बड़ी कहानी। हिंदुस्तान पे राज है मेरा, दिल्ली राजधानी, मैं एक हिंदुस्तानी।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।